गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा। सतर दहन हर नाम कहन अवर कश ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ। गुजरी महला पंजवा तू समरथ।

परम हितम दिल लाप दिलल बेनंतिया सुख पाए चित हितम जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ ए मन मृत शुभ चिंतम गुर शब्द हर रमणम मत तत ज्ञानम कल्याण निधनम हर नाम मन रमणम चल चित वित भ्रमा भ्रम जग मोह मगन हित।

दुख अधिक जन्म मरण पज शरण सतगुर उबर है हर नाम रिज रमण गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत ता

बंधन तोड़े सच वसै अज्ञान अंधेरा जाए। सब किछ देखै तिसै का जिनकी आ तन साज। नानक शरण करतार की करतारा खैलाज। पौड़ी।

मजलस तृष्णा टात मनसा कटोरी कूड़ परी पीलाए जमकाल। इत मद पीतै नानका बहुते खटिय है बेकार।

बहुत अहंकार। किशन सदा अवतारी रूधा कित लग तर संसार। गुरमुख ज्ञान रत्ते जुग अंतर चूकै मोह गुबारा। सतगुरु से

निर्मल मन करण कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

खसम कढाई किरत कमावना, मंदाक सैना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना, जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रुआवना, जो दे

जन्म गवावे एक मूढ़ मुगदना चेतह मूले जो आया तिस जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा।

राम। हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे। मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे। कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर।

सुख समत कर जाने, सोई भगत दुख सुख समत कर जाने। हर हर नाम हर राता हर कृपा कर, सतगुर मेल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हो मैं पापा राम। जप हर हर

रथ जगत सगल दे हथा राम समरथ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हों कुर्बानी दास तेरे जिन्नी एक पछाता।

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस चारो गुण

मिलहै जे सतगुर लागहै साचे पाए। सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए। अवगुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सचराती सच्चे शब्द सदा सुख पाए।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेसया गुर विटड़े हो।

पौड़ी। सो सतगुर सेव हो साध जन, जिन हर हर नाम दृढ़ाया। सो सतगुर पूजहो दिन सरात, जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुर देखो एक निमख निमख,

ते संत भले गुर सिख है जिन नाही चिंत पराई चुखा तन तहंत ना का गुरु है जिस अमृत

जाए। सतगुर मिलै ता निर्मल होवै, हर नामो मन वसाए। नानक नाम त्याया सुखदाता, दुख विसरिया सहज सुभाए। पौड़ी जिन जग जीवन उपदेसिया, तिस गुर कौ हो सदा पुमाया। तिस गुर कौ हो खनिए, जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया।

हन सो गुर सिख कहिए, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख कौ हो सदा नमस्कारी। जो गुर कै पहने गुर सिख चलिया, श्लोक महला तीजा।

सोच पड़े। अपना कर्म उस राख न सा कहे की पर कर जोहन लागा, कर दर राख है जे रस चाख है। जो

चात्रक जल ज्यो चात्रक जल बिन बिल लावै बिन जल प्यास न जाई गुरमुख जल पावै सुख सहजे हरिया पाए सुपहाई।

रहाऊ। जिन हर ते आया सब किश तिसका, तिसकी भूख गवाई। ऐसा तन दिया सुखदाता, निखोट न कभी जाई। आनंद

ना थापै साथ संगत बुद्ध पाई साकत का बकना इउ जानौ साकत का बकना इउ जानौ जैसे पवन चुलाई कोट पराध अशाद्यो इहु मन।

मन रव रहया सच्चे रहया समाए नानक हौ बलिहारी तिन कौ जो चलन सतगुर पाए महला तीजा।

बनखंड जाए जोग तप कीनो, कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी शब्दी मोनी, जम के पटै लिखाया।

या भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण भय भागी।

जुग महें धर्मा जन कौ नाम बडाई सोभ नामो गात नामो पत जन की माने जो जो होग रहाऊ।

हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरै ना काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा, बिनसै भरम अंधेरा।

सुरहै आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर है।

पौड़ी। हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक

स्वर्ग लोक है, जित ते पृथ्वी नव खंडन है, विसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है।

प्राण जस ऊतम खट दर्शन गाल है राम शंकर करोड़ तैतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गाव।

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुण सत गुण दान दिवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

इस हर तन का शाहर आप है संत हो। इस हर तन का शाहर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर तन लद चलाई।

पाई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न साक है तीने ताप, निमख न बिसरह है।

सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचै रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मनमुख

सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए, प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए। सो शहो सच्चा विसरै त्रिग जीवन संसार, नदर करे ना विसरै गुरमति विचार, सदगुरु मेले।

सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वडभा

भारत्य आवहो सोण हर गुण तीने सह सुभाए गुरमत सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखया तिन गुर मिलया तिन जन्म मरण पाओ भागा।

निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी, संत जना वड भागी पाया, हर कथिय अकथ कहानी, हृदय हर हर हर तुम उपज

गाओ मंगलो नित हर जन हो पुन्नी इच सबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मरै न आवै जाई राम।

मन मोह मद सगल ब्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूर्ण काज हमारे गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो सगल।

सुबह निवाज सराए गुजारो साध संग जा को हर रंग लागा तन तन सो जन पुरख सुभागा ईत ऊत जन सदा सुहे।

मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिन की कहन गत कही न जाई सच्चा आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारे जिसनो नदर करे सोई जन पाए गुर का

ज्यों हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे काम। एक ना करम है दे वड्याई, एक परम भव है अविमाना। बिलावल महला तीजा। पूरा

मन अभिमाना कहत सुनत सबे सुख पावहे मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बस हो वड भागनी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना।

आप ही घट घट आप अलिपना आप ते अवगत आप संगरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवां।

सफल सो आया बिलावल महला पंजवां। मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया।

निस्बा सरमन अनद होत चितवत कृपाल रहाउ। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लाग हो पाल, मोको दीजै दान प्रभ संतन पगराल उकत सियान।

संत संग समावो सास सास नहीं विसरै अनकत है ना तावो सफल दर्शन गुर पेटिया मान मोह मिटावो सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो।

साध संग मन तन हितै फिर दुख न जापै। हर हर हर हर जापिया अंतर लिवलाई, किल विख उतर है शुद्ध होए साधु सरनाई। सुनत जपत हर नाम जा

रहाउ। सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत तृप्ता से ताका अचरज स्वाद। आप मुक्त संगी तरे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पही दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवां।

करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

मोकौ सतगुर मंत्र दृढ़हाए। अभिमान खोए खोए खोई हो, मोकौ सतगुर मंत्र दृढ़हाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई हो, मोकौ सतगुर मंत्र दृढ़हाए। अतुल अतुल अतुल।

शरण परयो हर चरण गहे प्रभ गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता पतित पवित एक निमख जपाइय अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले संत चरण चरण मन लाइय कित विधि है कित संयम पाइय।

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चुवै।

अमृत है सब तृष्णा भूख गवाए हरड़स पी संतोख हुआ सच वस्या मन आए सच त्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सच्चो दहद पस

हर हर करत मिटे सब भरमा, हर को नाम लै उत्तम धर्मा। हर हर करत जात कुल हरी,

पछाणे। ऐसा ज्ञान बिचारे कोई तिसते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई। ता की गत मित अवर न जाने गुरबिन समझ न होई। पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी। मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर भाई नानक तिन।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचय।

पलत पलत होहे दोहे सुहेले अचर्ज पुरख त्याओ रहा उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होवह मीत निर्मल तेरा होवै चीत सब ते उत्तम इहो करम सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर

गुरमुख के ती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हों मैं सुख है, त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने मह राखै, सतगुर शब्द भी

जे कुटंब छोड़ पर पवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है।

आई। पूजा करै सब लोक संत हो, मन मुख थाए ना पाई। शब्द मरै मन निर्मल संत हो, ए पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवला।

सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया ए बनियाइया, कह नानक सुनहो संत हो, शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित करस पह गए, करस

राम रमा कंठ उर धारिय उर धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो।

नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास ध्याएणा।

तुझे पछान नहीं, मोहे निर्गुण अनाथ शरणी आया। बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुर नाम दिया कुशल थिया।

संत प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोहे जियो सदा सदा हर सिमरिये जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे

जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो। हर रंग राते सहज माते तिल ना मन ते बिसरै, तज आप शरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीसरै। गोविंद गुण निध श्री रंग।

विचारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरु।

कवन मुख चंद हिवै कर छाया, कवन मुख सूरज तपै तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहै, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहै, कवन जोत जो काल संघारै, बोलै बाणी नानक बीचारै, शब्द भाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसै मिटै अंधियारा।

सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय भवजल संसारो, त्रैसत अंगुल वाई कहिय, तिस कहो कवन अधारो।

बैरागी साच रखिया उर तहरे नानक बिन नावे जोग कदे ना होवे देखो हृदय बिचारे।